0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2 लाख करोड़ रूपये क्लेम के रूप में किसानों को मिले हैं।
1: मुंगारु हंगामी ना बेले वीमे गागी ईगा नोंदणी माडिकोळ्ळिरि।
2: बैंक सामान्य सेवा केंद्र ग्रामवन केंद्र ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ www.samrakshane.karnataka.gov.in ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ।

0: फिर एक दिन जंगल में चिड़ियों का शिकारी घुस आया। चिड़ियों को पता नहीं था शिकारी ने जाल बिछाया था।
1: ओए मां, फिर क्या हुआ? चिड़िया पकड़ी गई क्या?

0: फिर एक दिन जंगल में चिड़ियों का शिकारी घुसाया। चिड़ियों को पता नहीं था शिकारी ने जाल बिछाया था।
1: उही माँ, फिर क्या हुआ? चिड़िया पकड़ी गई क्या?